0: KZSU Stanford.
1: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों, ये है KZSU Stanford 90.1 FM. मैं हूँ प्रांजलि और आप सुन रहे हैं चाय टाइम. दोस्तों, शब्दों और मौन के बीच एक बेहद ही महीन मखमली रास्ता है, जहाँ शब्द कम पड़ते हैं लेकिन जो चुप्पी से परे है, पर वो हमें ले जाता है अभिव्यक्ति की पराकाष्ठा तक. इतनी बड़ी दुनिया, हजारों लोग, अलग अलग देश, अलग अलग भाषाएं, लेकिन एक भाषा जो धर्म, जाति, समुदाय से ऊपर है, जिसे हर कोई बोल सकता है, समझ सकता है, और वो है संगीत की भाषा. संगीत दिल की जुबान है, हृदय की अभिव्यक्ति है, सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की उत्पत्ति करती है, आनंद देती है, वही संगीत है. संगीत का सागर अथाह है और उसकी थाह पाना हमारे जैसे सामान्य जीवों के लिए संभव ही नहीं है. लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे स्टूडियो में स्वयं जो संगीत की एक शाला है, जो सुरों के सम्राट हैं, माननीय श्री राजा काले जी पधारे हैं. और ये KZSU स्टैनफर्ड का सौभाग्य है, ये चाय टाइम का भाग्य है कि आज उनका हाथ थामकर, उनकी उंगली पकड़कर हम संगीत के इस अथाह सागर में गोते लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो जो इतना कुछ जानते हैं और इतना बड़ा जो उनका संगीत का ये पूरा जो इतिहास कहती हूँ मैं उन्हें रहा है, उसे हम थोड़ा कुछ सुन पाए, समझ पाए, तो यही हमारे लिए बहुत ही किस्मत की बात होगी. जुड़े रहिए चाय टाइम से.
2: Not only Stanford Hospital and Lucille Packard Children's Hospital, but several other local hospitals as well, and they need your help to save lives. If you are in good health and between the ages of 17 and 74, the Stanford Blood Center invites you to donate. You can even make an appointment online. All blood types are needed. For more information, please visit bloodcenter.stanford.edu. That's bloodcenter.stanford.edu. Or call 650-723-7831.
3: KZSU Zootopia is our robot-curated music service that takes over when our live DJs aren't available. Like a self-driving car, Zootopia operates with no human at the controls. Zootopia now streams epic tracks from thousands of our DJs' most played albums over nearly the past two decades, so you can enjoy the best of college radio KZSU style. Check out our live playlist at kzsu.rocks. Zootopia, truly the Bay Area's coolest college radio on KZSU.
1: फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है. तो साथियों, पंडित जी को परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे शक्कर खाकर हम हमारी जुबान मीठी करते हैं, बस उनका परिचय देकर मैं मिठास लाना चाहती हूँ हमारे स्टूडियो में. Pandit ji is an Indian vocalist, composer and scholar of Indian classical, semi-classical and devotional music. He is a senior disciple of Pandit Jitendra Abhisheki ji. Pandit Raja Kale is known for rendering both old and new Hindustani classical music with an approach that is mesmerizing and also focused on the performance. His presentation of ragas with the unique blend of aesthetics and technicalities is an enriching experience. With his appealing style and gifted voice with wide range and rare tonal qualities, Pandit ji achieves perfect articulation in the ala, taan, as well as the exposition of the bandish. He is equally proficient in presenting thumri, tappa, natakit, bhajan and bhavgeet. He holds a PhD with a thesis on importance of bandish in khayal. He has also received senior fellowship from the Department of Culture of the Government of India for study of the subject Comparative Study and Analysis of Gayaki of Legendary Singers Pandit Bhimsen Joshi, Pandit Kumar Gandharv, Pandit Jitendra Abhisheki and Pandit Jasraj. Please join me in welcoming Pandit Raja Kale ji in our studio.

0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत सुंदर। और ऐसे मौके बहुत ही कम आ पाते हैं कि हमको लाइव स्टूडियो में इतना सुंदर म्यूजिक सुनने मिले, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए, और हमारे सुनने वालों का भाग्य कि आज वो आपको सुन पा रहे हैं।
0: मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और ये जो साक्षात्कार हो रहा है
1: जी
0: आपका, आप जिस प्रकार से कह रही हो कि भारतीय संगीत और उनकी जो म्यूजिकल फॉर्म्स है
1: जी,
0: उसके
1: जी।
0: बारे में बात करने का मुझे जो अवसर मिल रहा है
1: जी,
0: बहुत आभारी हूँ आपका
1: जी। और वो बात है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो बात करते हैं गुरु की, और शुरू करते हैं गुरुकुल से। और आप हमें बताइए गुरुकुल ट्रेडिशन के बारे में, और वो ज़माना, वो दिन जब आप अपने गुरु अभिषेक जी से सीखा करते थे और दिन रात मशगूल रहा करते थे संगीत में।
0: पंडित जितेंद्र अभिषेक जी मेरे जी, गुरु
1: जी,
0: बहुत लेजेंडरी कंपोजर और वर्सेटाइल वोकलिस्ट रहे और एक समर्थ गुरु रहे। उनसे मैं म्यूजिकली मेरा जो एक परिचय हुआ, उनके पास जाने से पहले 5-6 साल जो हमने उनको उनके कंपोजिशन के माध्यम से, 1968 का वो समय था
1: जी,
0: और एक 5-6 साल उनके नाट्य संगीत, क्लासिकल और भजन, मराठी अभंग, इनकी रचनाओं से मैं बहुत प्रभावित हुआ
1: जी।
0: और वो सब रचनाएं मैंने बहुत बाय हार्ट कर ली थी, और उनके साथ भी बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में मेरा वोकल सपोर्ट रहा, और उनको बहुत पसंद था कि वो हमें बहुत मौका देते थे पीछे तानपुरे पे गाने के लिए
1: जी।
0: और जिस प्रकार से एक म्यूजिकल एक डायलॉग मेरा रहा, मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। 1974 में मैं उनके पास गया
1: जी,
0: लोनावाड़ा में। उनका घर एक आदर्श गुरुकुल था
1: जी,
0: ये 1.5 एकड़ के उस वो जगह थी, और वेल फर्निश्ड बैंगलो।
1: अच्छा।
0: और उसमें हम 4 ही लोग थे।
1: अच्छा।
0: गुरुजी हमारे गुरु भाई थे, अजीत कड़कड़े
1: जी,
0: मंगेश मुड़े, और हम 4 ही लोग उसमें दिन रात, यानी रात का एक सोने का 5-6 घंटे छोड़ दिए हमने, तो दिन रात हम उसमें लगे रहते थे। तो उनको एक बहुत एक उनका इतना नाम था उस वक्त
1: जी।
0: बहुत सारे मराठी म्यूजिकल्स का डायरेक्शन उन्होंने किया था, और एक चौमुखी गायक के तौर से लोग उनको बहुत पहचानते थे, और उनकी रचनाएं तो बहुत गजब की थी
1: जी।
0: जिसमें एक भाव सौंदर्य,
1: हाँ हाँ।
0: और एक उनका जो इंटेंस सोलफुल जो कहन थी उनकी
1: जी जी,
0: वो उससे बहुत लोग प्रभावित थे। नाट्य संगीत में तो उन्होंने क्रांति की। नाट्य संगीत का जो उनका एक नजरिया था
1: जी,
0: तो एक बहुत कम समय में कितना आकर्षक और सुंदर हम गाना पेश कर सकते हैं, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने रखा। और नाट्य संगीत के बारे में उनका यही कहना था कि ये अप्लाइड क्लासिकल म्यूजिक है
1: जी।
0: जैसे हम उनके घर ने गुरुकुल में,
1: हाँ हाँ।
0: हम रहे 5-6 साल का मेरा वास्तव्य रहा
1: जी,
0: और कभी भी उन्होंने नाट्य संगीत की अलग से तालीम नहीं दी हमको।
1: अच्छा, अच्छा।
0: हाँ, जो चलता था वो क्लासिकल चलता था। क्लासिकल और मैं जो सुरों का नाट्य था वो बड़ा गजब का था, और उनका ये मानना था कि ये क्लासिकल म्यूजिक अप्लाइड क्लासिकल म्यूजिक है नाट्य संगीत, इसलिए इसमें जो काम होगा वही सुरों का नाट्य जो है उस कंपोजिशन में रहेगा। और उसकी तालीम थी हमको कि कहन कैसी होनी चाहिए
1: जी,
0: बंदिश कैसी कहनी चाहिए। बंदिश इतनी अच्छी रखते थे
1: जी
0: कि पहले आवर्तन में उसको दाद मिले, तो बंदिशों का उनका एक अपना बहुत ही अच्छा नजरिया था रखने का।
1: तो यहाँ मैं मेरे सुनने वालों की तरफ से भी ये पूछना चाहूंगी आपसे, हाँ, कि जब आप कहते हैं बंदिश,
0: हाँ,
1: तो हमें और बताइए इस बारे में।
0: बंदिश ये जो शब्द है वो क्लासिकल के फील्ड में इसको रचना को बंदिश कहा गया
1: जी,
0: जिसमें वैसे तो भाव संगीत और बाकी के म्यूजिकल फॉर्म्स की भी रचनाएं होती है
1: जी,
0: लेकिन उसको बंदिश नहीं कहा। इसको क्यों कहा? उसका कारण यह है कि जिसमें रागत्व बंदिश हुआ है, बहुत कम एक चार लाइन की उस कंपोजिशन में जिसको माध्यम बनाकर ख्याल का विस्तार होता है, तो उसमें जो शक्यताएं होती है राग की वो इतनी गजब की होती है, गुंजाइश जो बंदिश में
1: जी,
0: जो राग जो निबद्ध किया कंपोजर ने,
1: हाँ,
0: तो पुराने लोग कहते थे कि बंदिश की शक्ल देखो, हाँ, और राग का विस्तार करो। वहां तो शास्त्र भी नहीं था, शास्त्र तो बाद में बना, अच्छे संगीत का शास्त्र बना
1: जी।
0: संगीत ये पहले संगीत है, बाद में शास्त्र हुआ। तो बंदिश का जो मतलब है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बंदिश ये कलाकार को बांध देती है, राग को बांध देती है और श्रोताओं को बांध देती है, अगर कलाकार की साधना उसमें पर्याप्त हो तो। ये शर्त है।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम कह रहे हैं बंदिश, पर साथ में विस्तार भी है, व्यापकता भी है।
0: हाँ,
1: तो बंदिश में रह के, जैसे मुझे हमेशा लगता है ना कि होली के रंग सब तरफ बिखरे हैं, रंगोली के रंग मर्यादा में है, लेकिन फिर भी उसकी एक अलग सुंदरता। तो यहाँ पे दोनों हो रहा है कि एक मर्यादा भी है लेकिन विस्तार भी हो रहा है ना, गुंजाइश आपने कहा, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बंदिश में गुंजाइश है।
0: ये बात।
1: तो यहाँ इतने अच्छे सवाल और जवाब के बीच में परिचय कराना चाहूंगी हमारे सुनने वालों को, हमारे बे एरिया के राजू चिदंबरम का, क्योंकि वो भी हमारे साथ स्टूडियो में है और वो बार बार कुछ कहना चाह रहे हैं। तो यदि आप कैलिफोर्निया के बे एरिया से हैं तो राजू ये नाम कहते ही आपको अपने आप संगीत समझ में आएगा, सुनाई देने लगेगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजू चिदंबरम की, जो फाउंडर क्रिएटिव डायरेक्टर हैं अंदाज क्रिएशंस के, और वैसे तो हम उनको इंजीनियर और स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में भी जानते हैं, पर यहाँ पर हम उनके म्यूजिकल जो परिचय है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और राजू, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में और बहुत धन्यवाद आज आप लेकर आए पंडित जी को हमारे पास। तो आप क्या कहना चाह रहे थे?
2: थैंक यू प्रांजलि, बेहद खुशी हो रही है आपसे मिलके और पंडित जी से मिलके।
1: जी देखिए, स्टूडियो में ही महफिल।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाल के। तो पंडित जी, हम कुछ सुनना भी चाहेंगे। आपने जो बंदिश का एग्जाम्पल दिया उसमें बाउंड्री भी है लेकिन विस्तार भी है, तो एक अगर छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप दे सकते हैं तो बहुत।
1: या और अभी पंडित जी हम बात कर रहे थे ना विजिटिंग फैकल्टी, तो बस हमारी ये क्लास ही चल रही है, आप बस हमें समझाइए सुनाइए और देखते हैं थोड़ा बहुत तो सीख ही लेंगे हम।

0: देखिए
1: बहुत सुंदर पंडित जी,
0: ये राग देवता भैरव की बंदिश है और इसको हमारे गुरुजी ने कंपोज किया था
1: जी।
0: जो राग का जो एक बंधन है

0: तो इसको बांध दिया, ये राग को, इसमें बंदिश ये राग का सगुण रूप है और राग जो है वो निर्गुण रूप है, तो उसको ये सगुण रूप इतना अच्छा दिया हमारे गुरुजी ने, श्याम रंग उनका पेन नेम था
1: जी।
0: और इस बंदिश में उसका जिक्र है। तो ताल से जो रचना इंटरैक्ट होती है और एक अलग, जिसमें से अलग गुंजाइश निकलती है
1: जी जी,
0: तो वो बंदिश है जिसमें कलाकार बंधा गया और श्रोता भी बंधा गया, वो बंदिश है।
1: और सगुण से ही निर्गुण तक पहुंचा जा सकता हाँ, है और
0: बिल्कुल
1: जी।
0: ये विशेषता रही है
1: जी।
0: कि ये ख्याल फॉर्म जो है ये भारतीय संगीत का एक वैभव कहूँगा मैं
1: जी,
0: राग संगीत का एक वैभव है जिसमें कलाकार अपनी दुनिया खुद बसाता है
1: जी।
0: और वो एक राग विचार और अपना जो दृष्टिकोण है उसको रखने का, उस दृष्टिकोण को, उस विचार को एक हाइट तक लेके जाता है बंदिश के माध्यम से। तो बंदिश राग संगीत में बंदिश जो है बंधन का स्वातंत्र्य है,
1: बंधन का स्वातंत्र्य
0: हाँ
1: जी।
0: और बाकी की जो बाकी के जो म्यूजिकल फॉर्म्स हैं
1: जी,
0: उसमें जो है जैसे ठुमरी है, भजन है, नाट्य संगीत है, जिसमें भाव संगीत है
1: जी,
0: जिसमें रचना का बंधन है और राग का स्वातंत्र्य है, ये बहुत खूबी है, यानी ये सुंदरता है हमारे संगीत की
1: जी,
0: के बंधन में स्वातंत्र्य और स्वतंत्रता में बंधन,
1: बिल्कुल।
0: ये जो म्यूजिकल फॉर्म्स की जो यानी जिसमें शर्त यही है कि उसमें संगीत रहना चाहिए, उसमें भाव रहना चाहिए, उसमें एक एस्थेटिक्स रहना चाहिए
1: जी,
0: उसमें एक पुकार रहनी चाहिए
1: हाँ,
0: हाँ, ये जिसमें रहता है
1: जी,
0: वो संगीत को, वो जो संगीत का जो उद्देश्य है उसको वो फुलफिल करेगा। ये बातें नहीं रही तो शास्त्रीय संगीत भी कॉमिक हो जाता है
1: जी जी,
0: क्या सिर्फ शास्त्र से, पहले तो संगीत ये संगीत है
1: हाँ,
0: और बाद में शास्त्र बना
1: जी जी,
0: तो अच्छे संगीत का शास्त्र बनाओ ऐसे बुजुर्गों ने कहा था
1: जी,
0: और जो लीजेंड्स हमारे रहे हैं उन्होंने अच्छे संगीत का ही शास्त्र बनाया,
1: बिल्कुल। और ये इतना भी रेलेवेंट और सामयिक है क्योंकि हाँ, आजकल वही मिसिंग है ना लोगों हाँ, को इतना टेक्निक पे, पिच पे। और
0: शास्त्रीय संगीत के माने ये नहीं है
1: जी,
0: कि इसमें इतनी कम से कम 40% यानी ड्राइनेस हुआ तो वो शास्त्रीय है, ये बहुत गलत बात है
1: हाँ,
0: और इसको बहुत हमारे लीजेंड्स ने बहुत अच्छी तरह समझा और अपना जो दृष्टिकोण रखा
1: जी जी,
0: यह हमारे पर, हम बहुत भाग्यशाली हैं उनको हम सुन सके, पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी जी, पंडित जसराज जी और हमारे गुरु जी
1: हाँ,
0: पंडित जितेंद्र अभिषेकी, जिनसे मेरा एक भाग्य रहा कि मैं उनके सानिध्य में रहकर बहुत सारी एक चतुरस्त्र गायकी का मुझे परिचय हुआ और उनको याद करके मैं गाता हूँ।
2: सो प्रांजलि, फॉर द बेनिफिट ऑफ माय किड्स हु आर लर्निंग म्यूजिक, योर किड्स, अदर किड्स हु आर लर्निंग म्यूजिक, आई जस्ट वांट टू समराइज इन इंग्लिश अ रियली प्रोफाउंड पॉइंट दैट पंडित जी जस्ट मेड। देयर इज फ्रीडम इन कंस्ट्रेंट्स एंड देयर इज कंस्ट्रेंट्स इन फ्रीडम, व्हेन दे कंपोज अ बंदिश इन फोर लाइंस they bring the entire beauty of the rag and then you expand on that, and people used to do it hundreds of years ago and they continue to do it today, and Panditji is one of the icons who continues to keep that tradition alive. So if kids are listening to this, please take up classical music, foundational music, whether you do rock or light music, it doesn't matter, you'll really enjoy and your experience will be very enriching.
1: Yeah, और ये बात तो सच है कि फाउंडेशन चाहिए और उसी फाउंडेशन पे उनको ऊंची इमारत खड़ी करनी है।
0: बिल्कुल सच बात है। देखिए म्यूजिक कोई भी फॉर्म का क्यों नहीं होता है
1: जी,
0: उसके जो फंडामेंटल्स जो है
1: जी जी,
0: मैं मुझे यही कहना है कि गायकी जो है
1: जी,
0: सुर गाने की जो पद्धति है उसको जरा जान लो
1: जी।
0: आप भाव संगीत गाओ, ठुमरी गाओ, गजल गाओ या फिल्म संगीत गाओ
1: जी जी,
0: या ख्याल गाओ, बेसिक फंडामेंटल्स नहीं चेंज होते उसमें
1: जी जी।
0: हाँ, लय ताल का जो इंटरेक्शन है, जो उसका जो एक खेल है
1: जी,
0: तो वो जान लो और फिर कौन से फॉर्म में अपना मन लगाना चाहते हो उसमें काम करो।
1: तो फिर हम बात कर रहे थे भीमसेन जोशी जी की, और आपने उनसे जो आपकी संगत हुई या सीखा आपने, या उस बारे में, उस अनुभव के बारे में हमें बताइए।
0: भीमसेन जी ऐसे लीजेंड थे
1: जी,
0: जैसे पंडित जितेंद्र अभिषेकी, जसराज जी और कुमार गंधर्व
1: जी,
0: ये इन्होंने अपनी राह एक अलग ट्रेडिशन का रेस्पेक्ट करते हुए
1: जी,
0: अलग राह अपनी बनाई। और भीमसेन जी का एक जो उनका बंदिश के बारे में जो एक विचार था या गायकी के बारे में उनका एक अलग नज़रिया रहा, मुझे जैसे मैंने उनको सुना
1: जी,
0: तो स्पेल बाउंड कर देते थे। सुर का लगाव जो था
1: जी जी,
0: तो वो बहुत ही गजब का था। खर्च पे बहुत एक उनका विचार रहा, मेहनत रही उनकी
1: जी।
0: हमारे गुरुजी को भी उनके आवाज के बारे में बहुत ही रेस्पेक्ट था
1: जी।
0: जो वो कहते थे कि हम इतना गाते हैं लेकिन भीमसेन जी एक कसी हुई आवाज में जो एक अपनी बात रखते और असर, इफेक्ट, इम्पैक्ट जो रहता था उनके गाने का, तो वो गजब का था। और जो वो गाते थे वही बंदिश थी। बंदिश का जो एक इन ये तीन लीजेंड्स को मैं अलग बहुत यानी इनका एक नज़रिया बंदिश की तरफ बहुत ही सुंदर रहा
1: जी।
0: और उनकी एक प्रतिज्ञा रही कि मैं बंदिश ऐसी कहूँगा कि बस जो पहले आवर्तन में मैं उसकी दाद
1: ले सकूँ।
0: बंदिश बहुत अच्छी रखते थे कुमार जी, जसराज जी और गुरु जी हमारे। भीमसेन जी का वैसे नहीं था, उनका गायकी पे बहुत ये था, राग पर आवाज तैयार करके गाने का उनका एक जो उनकी एक सीख थी, नई पीढ़ी ने वो लेनी चाहिए। हाँ, बहुत यानी जो कुछ मैं जो गाऊंगा वो बंदिश है ऐसे कहते थे वो।
1: अच्छा। हाँ,
0: और उनके सुरों में ये ताकत थी। उनके आकार इकार उकार ऐसे लगते थे कि श्रोताओं का ध्यान ही नहीं जाता था बंदिश के शब्द क्या है और क्या है। और ये उसे बहुत है ना, देखिए वो एक ट्रांस म्यूजिक का एक एग्जाम्पल था भीमसेन जी का गाना, ट्रांस में जाके
1: जी।
0: और यानी अंदर से बहुत आग लगी है और उसमें वो
1: जो पुकार,
0: हाँ, पुकार है
1: हाँ,
0: तो
1: हाँ।
0: वो उनके गाने में वो बात थी
1: जी जी।
0: और बुजुर्गों का उनके गुरुजी सवाई गंधर्व और अब्दुल करीम खान साहब आदर्श थे उनके
1: जी।
0: तो वो विचार से उन्होंने अपना गाना डेवलप किया था
1: हाँ।
0: और जिसमें एक अहम बात थी कि ये बंदिश के बारे में उनका कहना था कि मैं गायकी के पीछे हूँ, बंदिश है, मैं जो गाऊंगा वो बंदिश है
1: जी जी,
0: मैं गायकी के पीछे हूँ, ये उनका विचार था
1: जी जी।
0: और कुमार जी, जसराज जी और हमारे गुरु जी ने
1: जी,
0: एक बहुत ही यानी क्लासिकल में क्या संगीत में क्या सीखना होता है इसका वो आदर्श एग्जाम्पल रहे मेरी दृष्टि से, कि एक कला और शास्त्र का मिलाप कैसे रखना है ये उनके, और भाव सौंदर्य कैसे रखना है
1: तीनों का मेल बहुत जरूरी है ना।
0: हाँ, बहुत ही खास था।
1: जी जी,
0: तो ये भीमसेन जी का एक अलग सीख थी
1: जी,
0: ये बहुत रियाज करके आवाज कल्टिवेट करके गाना चाहिए।
1: तो यहाँ पे कुछ सुने हम, आप कुछ सुनाना चाहेंगे?

0: ये रिकॉर्ड मैंने सुनी थी 65-68 के बीच में सुनी थी
1: जी,
0: और उसका असर आज भी हम उस वो उतनी प्यारी लगती है मुझे रिकॉर्डिंग
1: जी।
0: तो भीमसेन जी का मैं इतना ही कहूँगा उनके, मैंने कंक्लूड, मैं क्या उनके बारे में कहना है, मुझे शब्दों के परे था
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: एक असर उनका
1: जी,
0: और ट्रांस में जाकर गाना
1: जी। और फिर जब हम जाते हैं कुमार गंधर्व जी की तरफ तो हाँ, वो फिर एकदम अलग
0: कुमार जी बहुत
1: विश्व है।
0: कुमार जी का क्रिएशन, उनका बंदिश की तरफ देखना
1: जी
0: बहुत ही, यानी एक क्रिएटिव जो एक सृजनशीलता का एक उच्च कोटि का बिंदु थे कुमार जी।
1: जी तो अभी मालवा के एक बहुत प्रसिद्ध गायक हैं पद्मश्री प्रहलाद टिपानिया, और उनके साथ मैं कबीर बहुत सुनती हूँ, समझती हूँ, काफ़ी रिसर्च कर रही हूँ। और साथ ही जब कबीर की बात आती है तो हम हमेशा कुमार गंधर्व जी की भी बात करते हैं, तो एक अलग ही उन्होंने बिल्कुल मतलब कबीरमय हो गए वो, और वो एक उन्होंने ऐसा कुछ थामा और ऐसा कबीर को कि पूरे मालवा में क्या हर जगह हम जब बात करते हैं उनकी तो कबीर अपने आप आते हैं, तो वो भी उनका एक अलग पहलू रहा।
0: हाँ बिल्कुल, कुमार जी ने कबीर सिर्फ गाया ही नहीं
1: जी,
0: लेकिन वो कबीर की विचार सरणी भी जो उनके जीवन का एक अभिन्न अंग रहे जैसे लगता है।
1: बिल्कुल,
0: बहुत ही यानी उन्होंने लोक संगीत के लगाव उसमें जी, निर्गुण में जो लाए हैं
1: हाँ,
0: गजब के थे
1: जी। और बात लोक संगीत की है, हम बातें करते हैं क्लासिकल सेमी क्लासिकल, तो ये जो अंतर है उस बारे में हमको बताइए कि ये जो विधाएं हैं अलग अलग।
0: देखिए धुन से राग,
1: हाँ
0: राग यानी ही धुन,
1: राग यानी ही धुन,
0: इतनी यानी सब में इजी डेफिनेशन मैं ऐसे करूंगा, राग यानी धुन
1: जी,
0: धुन से राग बने। कुमार जी ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया
1: जी,
0: कि धुन में बसे राग सारे, धुन में बसे राग सारे,
1: धुन में बसे राग सारे।
0: तो ये कुमार जी की जो एक ये था ना, ने वो धर्मोपदेश उपदेशक की एक जो उनकी गुरु की जो भूमिका रही
1: हाँ,
0: तो उस दृष्टि से उनके स्टेटमेंट्स भी रहे
1: जी,
0: ये बहुत कम शब्दों में वो मर्म कह देते थे कुमार जी।
1: बिल्कुल,
0: और आवाज भी एक डिवाइन, जैसे आकाशवाणी हो रही है
1: जी,
0: ऐसी आवाज थी कुमार जी की।
1: हाँ।
0: तो हर गायक का एक जो उसके आदर्श होते हैं जैसे उनको सराउंडिंग, जैसे म्यूजिकल जर्नी में सराउंडिंग मिला उनको
1: जी,
0: और उसमें से उन्होंने अपना पैशन बरकरार रखते हुए
1: जी
0: अपना विचार जो है एक हाइट तक
1: लेके गए, ऊंचाई तक लेके
0: हाँ,
1: और दूर दूर तक फैली उनकी आवाज हाँ,
0: तो कुमार जी का एक अलग ट्रीटमेंट रहा, पंडित जसराज जी का एक बहुत अलग ट्रीटमेंट रहा।
1: तो पंडित जसराज जी का प्योर क्लासिकल की तरफ ज्यादा झुकाव,
0: पंडित जसराज जी
1: जी
0: जिन्होंने एक सुरों की कविता गाई
1: सुरों की कविता जी,
0: सुरों की कविता गाई
1: बिल्कुल,
0: और बहुत देखिए क्या इतना सॉफ्टनेस
1: जी
0: रखकर भी इंटेंस सोलफुल म्यूजिक गाया जा सकता है, इसका एक आदर्श उदाहरण रखा।
1: बिल्कुल,
0: इतना यानी दिल को छूने वाला म्यूजिक
1: जी।
0: तो मुझे उनकी भी रचनाएं उतनी प्यारी लगती है, मेरे अभ्यास का विषय है पंडित जसराज जी के
1: जी, जी।
0: रचनाएं, और जैसे मैंने पहली बार उनका नटभैरव सुना था
1: जी,
0: हंसध्वनि सुना, शुद्ध भरारी सुना
1: जी,
0: वो आज भी मन में बसा हुआ है।
1: तो आज हम क्या सुनेंगे आपसे?

0: होगा और वो उस मुखड़े ने मुझे कैसे इंस्पायर किया उस पे मैंने एक रचना बनाई।
1: अरे वाह,
0: उसका मुखड़ा गाऊंगा।
1: ठीक है, ठीक है।
0: हाँ जी।

0: डोरी तोड़ी, ऐसे पंडित जी ने कहा था
1: जी।
0: मैंने सवाई गंधर्वों में सुना था उनको
1: जी।
0: और इतना मन में बस गया है ये मुखड़ा
1: जी।
0: तो मैंने उनको बाद में याद दिलाई उस महफिल की
1: जी।
0: तो वो कहने लगे वो मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन उस मुखड़े ने मुझे जो इंस्पायर किया
1: जी।

0: आवरी तोड़ी मन में बस गया है और हम अभिषेक जी के शिष्य हैं
1: जी,
0: इसलिए वो जो अच्छा जो जो जो उदात्त उन्नत और सुंदर है
1: जी,
0: उसको अपनाने का हमारा प्रयास रहा।

0: तो हर कलाकार से सीखने का मेरा एक प्रयास रहा।
1: आपने कहा कि सक्षम गुरु होना चाहिए, पर मुझे आपको सुन के लगता है कि सक्षम शिष्य जब मिले ना, तब गुरु का ध्येय पूरा होता है। और मुझे हमेशा लगता है मुझे सुर ताल की कोई समझ नहीं है, लेकिन आज आपके सामने बैठ के आपको सुन के मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। मुझे लग रहा है मैं पंढरपुर में हूँ, विठोबा के दर्शन हो रहे हैं। बताइए, तो इसे कहते हैं संगीत जो आप गा रहे हैं। और देखिए, हर जगह जब चोट लगती है तो दर्द होता है, लेकिन संगीत की ही चोट ऐसी है जिसमें खुशी मिलती है।
0: ये बात है।
1: तो मुझे पता नहीं कि वो संगीतज्ञ
0: संगीत, संगीत में एक बात मुझे मैंने अनुभव की है
1: जी जी,
0: कि सुख और दुख रहता ही नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: अद्वैत हो जाता है, द्वैत नहीं रहता है। संगीत ये अभिव्यक्ति का बहुत ही अच्छा माध्यम है
1: जी,
0: चाहे आनंद हो चाहे दुख हो
1: जी,
0: उसमें वो जो एक डिग्निटी से बात रखने की जो गुंजाइश है
1: जी, जी।
0: वो गजब की है।
1: और जब प्यार की बात हो, भक्ति की बात हो, तो वही दो का अंतर मिटा के एक होना, वही तो हमारा ध्येय है। और आप वही कह रहे हैं कि ड्वेलिटी ही चली गई ना, एकाकार हो गया।
0: तो संगीत आत्मा की भाषा है,
1: बिल्कुल
0: हृदय की भाषा है, और वो वैसी ही गानी चाहिए, इस पे मेरा पूरा विश्वास है
1: जी।
0: शास्त्र बाद में आएगा,
1: हाँ, हाँ।
0: शास्त्र सबकॉन्शियस में रखो,
1: हाँ।
0: शास्त्र जरूर पढ़ो
1: जी, जी।
0: उसके प्रोटोकॉल्स निभाओ, लेकिन संगीत को आगे रखो
1: जी।
0: और ये सभी बड़े परफॉर्मर की सीख रही है
1: जी,
0: जिन्होंने भावना को आगे रखा,
1: हाँ।
0: कला को आगे रखा, राग का सॉन्ग आगे रखा, बंदिश का सॉन्ग आगे रखा
1: जी।
0: उन्होंने बड़ी क्रांति की इस फील्ड में, उनका कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने अपनी राग खुद बनाई
1: जी,
0: जिसको राग का आत्मा या बंदिश का मर्म मालूम है, वही कलाकार अपनी राग खुद बनाते हैं। इस कंक्लूजन पे मैं पहुंच गया हूँ
1: जी। और वही आपको उस धरातल पे लाते हैं जहाँ आप और सुनने वाले दोनों एक हो जाए ना, क्योंकि अंत में तो वही है उद्देश्य।
2: तो पंडित जी, प्रांजलि बहुत ही भावुक हो गई आपके आपके गाना सुनकर। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा मूड बदलते हैं। ये शास्त्रीय संगीत और नाट्य संगीत का एक बहुत ही मधुर मिलाप हुआ था अभिषेकी घराने में, कटियार कालजात घुसली।
1: हाँ,
2: तो उसका अगर सालक वाली राग था,
0: लागी करे जुआ कटार सुना था।
2: ठीक है,
1: ठीक है, जो आप कहें पंडित।

0: बहुत बहुत बहुत सुंदर पंडित जी। और सखीरी मैं तो सूद बूद बैठ बिसारी, बिल्कुल वही हाल है मेरा भी। और राजू कह रहे हैं कि मैं भावुक हो गई हूँ, तो उस भावुकता से निकालते हैं, पर ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है आज, बस हम डूब ही रहे हैं आज तो। पंडित जी हम तो यहाँ इतने अभिभूत हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है सुनते ही जाएं, लेकिन वक्त की पाबंदी है, बंदिश, घड़ी का इशारा। तो मैं यहाँ लेकिन आपसे पूछना चाहूँगी कि आप तो अपने आप में एक संगीत की पाठशाला हैं और आपने एक ऐसा स्वर्णिम युग देखा है और आप भी अभी इतना ज़्यादा इस ऊंचाई तक आप ले जा चुके हैं, लेकिन आगे इसका क्या भविष्य है? कई बार ऐसा देखने में आता है कि आजकल बस फिल्मी संगीत है, पॉपुलर संगीत, लोग उसी की ओर जा रहे हैं। तो आप लोगों को सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपकी कला आगे बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि आपने अपने गुरुओं से सीखा, अब आपको आगे करना है, तो उस बारे में मुझे बताइए।
1: देखिए, मेरे गुरु जी ने शिष्यों में मेरे पर बहुत जिम्मेदारी डाली है।
0: जी जी,
1: उनको पूछा था कि आपके शिष्यों में से एक नाम आप बताइए, ये बहुत मशहूर गायिका जो है देवकी पंडित
0: जी,
1: उनके पिताजी ने पूछा था, तो एक नाम बताइए आपके शिष्यों में, आपका विचार कौन आगे लेके जाएगा
0: जी।
1: तो मैं यहाँ पर भी मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि गुरुजी ने मेरा नाम लिया।
0: अच्छा।
1: और उनको ये विश्वास था, तो उस विश्वास से हमने स्वराभिषेक गुरुकुल की एक नींव रखी है।
0: अच्छा।
1: और जिसमें क्लासिकल और सेमी क्लासिकल के हर फॉर्म को हम सिखाते हैं। यहाँ बे एरिया में
0: जी, जी।
1: बहुत सारे विद्यार्थी मेरे से सीखते हैं, शिकागो में सीखते हैं, न्यू जर्सी में सीखते हैं और मुंबई में तो है ही।
0: अच्छा।
1: तो ये जो संगीत जो आत्मा की भाषा है
0: जी,
1: उसको सिखाने का हमारा प्रयास है, शास्त्र के साथ लेकिन भावना के साथ, इंटेंस सोलफुल म्यूजिक का जो एक रास्ता है, जो बुजुर्गों ने हमें रास्ता बताया, जिनका आदर्श रख के मैंने आज तक की ये जर्नी मैंने की है
0: जी।
1: तो वो संगीत छूना चाहिए और उसके लिए स्वराभिषेक गुरुकुल ये बहुत प्रतिबद्ध है
0: जी।
1: संगीत के हर फॉर्म को हम सिखाते हैं और जैसे मैंने पहले भी कहा कि फंडामेंटल्स तो एक है
0: जी, जी।
1: जिसको जिस रास्ते को जाना है उसका फ्रीडम उस विद्यार्थी को रहेगा
0: जी।
1: लेकिन स्वराभिषेक गुरुकुल ये इंटेंस सोलफुल म्यूजिक की पाठशाला है और एक एकेडमी के तौर पे भी हम इसको आगे लेके जाएंगे
0: जी।
1: और अच्छे संगीत का प्रचार और एक संदेश हम देने का हमारा प्रयास रहेगा
0: जी।
1: इंटेंस सोलफुल म्यूजिक ये
0: तो स्वराभिषेक
1: गुरुकुल का, हाँ, गुरुकुल का एक
0: जी, जी।
1: स्लोगन है, द पाथ टू इंटेंस सोलफुल म्यूजिक स्वराभिषेक गुरुकुल। और इसके लिए हम समर्पित हैं कि जो होनहार विद्यार्थी हैं उनको हम स्कॉलरशिप दे के पढ़ाएंगे।
0: अच्छा।
1: लेकिन स्वराभिषेक गुरुकुल का एक अपना भी एक अलग से बहुत सारी जो ज़रूरतें हैं
0: जी,
1: उसके लिए सहयोग की भी हमें आवश्यकता है,
0: बिल्कुल,
1: रसिकों की तरफ से।
0: हाँ हाँ।
1: और कोई पैटर्न्स और इसके माध्यम से भी हम उसको हाँ। अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके जाना चाहते हैं संगीत के, जैसे हम सगुण निर्गुण करते हैं
0: हाँ हाँ।
1: या अभंग वर्षा करते हैं
0: जी।
1: और बहुत सारे मुझे मेरा ये भी एक विचार है कि जो ट्रेडिशनल रचनाएं हैं उनका एक प्रोजेक्ट किया जाए, जैसे भातखंडे जी के उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन किया है
0: जी।
1: उसको परफॉर्मिंग एंगल से विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाए बहुत प्रिसाइज फॉर्म में, कि रचना कैसी कहनी चाहिए
0: हाँ।
1: और ये जो इंटरेक्शन जो है आलापतान में और इसका सुर लय ताल का जो ये खेल है वो उनको सिखाया जाए,
0: बिल्कुल,
1: तो ये हमारा उद्देश्य है।
0: तो नहीं, ये इतने अच्छे उद्देश्य के साथ ये आप संस्था बना रहे हैं और आपसे लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है। और अगर लोगों को इसकी जानकारी चाहिए या लोग जुड़ना चाहें, मदद भी कर सकते हैं सीखने के लिए भी, तो वो जा सकते हैं आपकी वेबसाइट राजाकाले.com पर और वहां आपसे जुड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: जी, और RAJAKELA राजाकाले.com ये वेबसाइट है, और मैं इसे अपने साउंड क्लाउड पे, फेसबुक पे, सब जगह भी

0: जी ये कहते थे कि अच्छी तरह से भाव संगीत भी गाना है तो आवाज की जरा तैयारी करके आओ, कल्टीवेट करके आओ तो असर रहेगा। ये असर की जो बात है और अच्छा संगीत ये लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है, कलाकार की जिम्मेदारी है। और मैंने तो आज तक सिर्फ संगीत की सेवा की है तो मेरे जीवन का भी उद्देश्य वही है कि अच्छा संगीत लोगों तक पहुंचाए और अच्छा सिखाए। नई प्रतिभाएं जो हैं बहुत, उनसे उम्मीद है मेरी
1: जी।
0: लेकिन उनको गाइडेंस अच्छा होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और पंडित जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ और मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और सच्ची ये हमारे पूरे स्टैनफोर्ड का, KZSU का, मेरे शो का भाग्य है कि आज आप खुद आए हैं और आपने, आपका जैसे संगीत दिल तक जाता है वैसी आपकी बातें भी, मतलब मुझे तो बार बार मेरे आंसू आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि सच्ची इसी ध्येय के साथ आप आगे हैं तो आगे अच्छा ही अच्छा भविष्य है।
0: बस।
1: तो मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं राजू को भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमें इनसे मिलवाया, इनसे जोड़ा। तहे दिल से मैं शुक्रिया कहती हूँ राजू आपको।
0: मैं भी बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और सभी सुनने वालों का, म्यूजिक लवर्स का, कनोजियस का हमें आशीर्वाद रहे कि हम इस मूवमेंट को आगे लेके जा सकें।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, तो मैं एक रचना से
1: बिल्कुल
0: इस मुलाकात का एक ये कंक्लूड करना चाहता हूँ और जिसमें संदेश भी है
1: जी।
0: इस रचना में
1: हाँ।
0: इसको लिखा है मेरी पत्नी जया ने।
1: अच्छा।
0: हाँ, तुम सूर की शरण में जाओ, सुर बन जाओ
1: जी।
0: तुम सुर की शरण में जाओ, सुर ही चेतना ईश्वर है, तुम्हारे रोम रोम में बसा है। हर व्यक्ति जब बात कर सकता है तो गाएगा क्यों नहीं, जरूर गाएगा
1: जी।
0: तो जो आवाज जो है सुर की साधना, सुर ही चेतना ईश्वर है, तुम्हारे रोम रोम में बसा है
1: जी।
0: उसे गाओ, अपनाओ, पहचानो, साधना में लीन हो जाओ, तुम सुर की शरण में जाओ। अनगढ़ कठिन रास्ता, पुकार ऐसी नहीं बोलती, वेदना मार्केट में नहीं मिलती है,
1: उपजती है।
0: हाँ, तो जो बात है वेदना की
1: जी।
0: पुकार संगीत में, पुकार जो है बड़े गुलाम अली खान साहब गाए गए प्रेम जोगन बन के, अभी किसी ने गा के बताना चाहिए कि जो उनकी परंपरा का जो निभा रहे हैं। तो ये अनगढ़ कठिन रास्ता है, अनगढ़ कठिन रास्ता मंजिल तक पहुंचाएगा, अनगढ़ कठिन रास्ता पर मंजिल तक पहुंचाएगा, सूर तुम्हारा साथी साथ कभी न छोड़ेगा। लीन होकर तन्मयता से उस छोर को अपनाओ, तुम सूर की शरण में जाओ। ये नई पीढ़ी को एक मेरा संदेश है कि सूर की साधना करके प्रगट होना चाहिए, प्रगट होने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। संत रामदास ने, रामदास जी ने ये कहा था कि अभ्यासून प्रगट आवे, प्रगटून नासून है। तो ये एक संदेश है और ये जो रचना है हमारे गुरुजी को याद करके मैंने बनाई है।
1: पुनः पुनः मी तुम्हाला मनपूर्वक धन्यवाद म्हणते।
0: थैंक यू।